हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी करो।

0: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसई नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
5: बाद वो मुआहदे की इजाजत दी ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनाई जो अमेरिका से थियल मुफाहमे ते यादाश्त नामे ते मौको सामने अची वियो। मुश्तफा खामनाई जारी कयल बयान में चयो त अमरीकी सदर मायूसी हर किस्म जहा हर बार इस्तेमाल क्या गाल मकसद हर किस न है दुश्मन अमरीका हद का मुतालबा कंदो तो असा कबूल न कंदासीं। ईरानी परे वजारत पारा सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनाई के बयान की आजा परे वजीर अब्बास सिराकी परे पॉलिसी ईरान के मफाद को तहफुज कदे सुप्रीम लीडर की रहनमई में ईरान के हकन वकार आजादी को तहफुज किया।

मोकिलणो पवंदो। बेरूत अमला कबूल लाइ व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग दौरान संदसि चवणो त मुआहिदाबाद इकरात में अबनाए हुर्मुज मां 1.20 करोड़ बैरल खां वधीक तेल जी फरामी थी चुकी आहे। ईरान कंहिं बि जहाज़ ते हमिलो नाहे कयो। ईरान आबनाए हुर्मुज खोलण वारे शर्त जी पासारी करे रहियो आहे। जेडी वेंस जो उहो चवणु आहे त ईरान खे $300 अरब जी फरामी वारनि ख़बरुनि में का सदाकत नाहे। तहरान खे $1 बि न मिलंदो। ईरान खे उहे फ़ाइदा तॾहिं मिलंदा जॾहिं पंहिंजे रवैये में तब्दीली आणींदो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी GP खे क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में नुमाइंदगी ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरनि खे एहतजाज करण वारनि ऐं वापसि ॻाल्हियुनि करण जो मशवरो। आज़ाद कश्मीर में थींदड़ चूंडुनि में हिसो वठण जो बि ऐलान। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर खे बि नओं मंशूर ऐं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ॾियणी पवंदी। आज़ाद कश्मीर जो मसइलो धरणा सां न पर कानून साज़ी सां हल थींदो। आज़ाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन खणणो पवंदो। असां आज़ाद कश्मीर खे वधीक नुक़सान थियण न ॾींदासीं। मुआजरनि जूं सीटूं बंदि करे ज़रूरत ख़तम नथियूं करे सघजनि। घणो थियो हाणे एहतजाज ख़तम कयो। एक्शन कमेटी पहिरीं मुआदे ते अमल करे ऐं चूंडुनि तरफ़ वञे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझु थी रहियो आहे हुन सां कश्मीर कास खे नुक़सान थिए पियो। गिलगित बस्तान में हुकूमत साज़ी ते इतफ़ाक़ करियो। वज़ीर जियालो हूंदो। डिप्टी स्पीकर हुकूमत साज़ी जे मामलनि ते

0: सोना को ऐसे ही बातें शुरू हो गई, 10 साल हो गए और ये बातें जरूर आप लोग करेंगे ना यार, इसके बगैर है क्या जिंदगी में मजा। तो मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे उस दिन कहा गया था कुछ नाम लिए गए, मैंने कहा यार ये तो आपने मुझे बिल्कुल ही टीज कर दिया, इसलिए कि जो 4 नाम उन्होंने लिए थे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ज्याले, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ज्याला अपनी लीडरशिप के, तो वो ऐसी बात नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे का करते जिससे मुझे खतरा हो, मैं शायद करते इनसे कोई खतरा नहीं।
1: वॾे वॾे तब्दीली वारनि ख़बरुनि खे अफ़वाह कराए छॾियो। मुराद अली शाह चयो त मुंहिंजी तब्दीली वारियूं ख़बरूं 10 सालनि खां हली रहियूं आहिनि, ख़बरूं केरु पकड़े रहियो आहे ख़बर न आहे, साम्हूं पार्टी जे ज्यालनि जा आहिनि, चइनी मां मूंखे ख़तरो न आहे, करप्शन जो मसलो मौजूदु, ख़बर पवण ते कार्यवाही बि करे रहिया आहियूं, कुझु ख़राब माण्हुनि जे करे सॼो निज़ाम ख़राब थियण न ॾींदासीं। यूनिवर्सिटी रोड जी तामीर में देर असांजी बदकिस्मती ऐं ठिकेदारी नाहली आहे।
2: ऐं को बि बिल हूंदो आहे, टेबल थींदो आहे त हुकूमती इतादी जेको आहिनि हुननि सां सलाह मशवरे सां ई थींदो आहे। अञा पेश थियो आहे, अञा हिन ते बेस बि थींदी ऐं सेनेट में बि वेंदो, हुन खां बाद हिन मामलात खे ॾिठो वेंदो। फ़िलहाल त कुझु नथा चई सघूं,
3: ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की जायदाद के ऊपर वैसे ही कब्जा कर लिया जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा तो ये लोग जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में आपके पीछे, ये अवामी नुमाइंदे हैं, कल इन्होंने अवाम में जाना होता है, इन्होंने
4: इनको वो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो उनको याद रहेगा, या अपना अफसर भेजे तो सही ना, इनको लग पता जाएगा।
5: तरह का जो कानून है ये कॉन्फिस्केटरी भी है, ये प्यूनिटिव भी है, और ये किसी की जायदाद आप उसकी मर्जी के बगैर और उसको बिना उसके यानी
1: वफ़ाक़ी हुकूमत टेलीकॉम पार्लियामेंट में बिल जे मतन तहत निजी कंपनियूं प्राइवेट मिल्कियतूं हासिल करे सघंदियूं, शहरी निजी कंपनीज़ ग्रो करण जा पाबंद हूंदा, पब्लिक पार्क्स ते बेनिजी कंपनीज़ खे हक़ हासिल थी वेंदा। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, लतीफ़ कोसा, शानदाना गुलज़ार ऐं ॿियनि केटी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे अहिड़ो बिल शरीयत जे ख़िलाफ़ हूंदो, कंहिंजी बि मिल्कियत मर्ज़ी बिना मुआवज़े वठी नथो सघे, हुकूमत जो अहिड़ो बिल कब्ज़े खे हथी ॾींदो, कब्ज़ा माफ़िया हलण न ॾींदासीं, हुकूमत तकरारी बिल पास कराए न सघंदी।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: मटियारी के हो भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6। दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क पास।

वण विया वाहिरा विया वया सजण सभई, वण विया वाहिरा विया वया सजण सभई। आ रोवां उन्हनि लाइ जेकी दुख विया ॾेई, ख़बर कान पई पिरी कहिड़े पार विया। प्रोग्राम रोशन सुबुह साण करे अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर ऐं क़बूल पवे सिक भरियो सलाम जी। समय कहिड़ा चाक चङा भला, असांजी हर पल हमेशह अव्हां प्यारनि सजणनि लाइ इहा दुआ हूंदी आहे त जिथे जो कॾहिं ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदा मुस्करंदा रहो। आमीन। साईं, मुंहिंजा डुख सुखनि जी सूंह हूंदा आहिनि। हिन दुनिया में शायदि ई को अहिड़ो माण्हू या अहिड़ो इंसान हुजे जेको जंहिंजी ज़िंदगी में सुख ई सुख हुजनि, ऐं हर माण्हूअ जी ज़िंदगी ॾुखनि सां टमटार हूंदी आहे। दुनिया जी कामयाब माण्हुनि जी ज़िंदगीअ जूं कहाणियूं पढ़बियूं त वाज़े इहा ख़बर पवंदी त सभिनी पंहिंजी शुरूआती ज़िंदगीअ जा जेके ॾींहं आहिनि उहे कीअं गुज़ारिया ऐं कहिड़नि ॾुख उन्हनि खे उन्हनि जे ॾुखनि, इल्म, अकुल, ॾाहप, हिमत, घीर घट ऐं मुसीबतनि खे मोजण जा ॾांव ॾिठा। ॾुख ऐं पंहिंजा साथी मिट माइट बि साथ छॾे वेंदा आहिनि, ख़ासि करे ॾुखनि में। ॿियो त ठहियो पर रत जा रिश्ता बि अकेलो छॾे वेंदा आहिनि। उन औखी वेल हर गिज़ न घबराइजे ऐं मसइलनि सां मुड़ुस माण्हू थी मोह ॾिजे। ईअं करण सां ॾुखनि जी सेज ज़रूर सुखनि जी सेज ज़रूर माणबी।

साईं मुंहिंजा कम मां ग़लतियूं नयूं शयूं वजूद में ईंदियूं। कोशिश वरी ज़मीन आहे, कोशिश जे हवाले सां हिकु नंढो त किंग बुरोस बादशाह खे जॾहिं क़ैद में रखियो वियो त हुन क़ैद दौरान जेल जी कोठीअ में हिकु तानीड़ीअ खे भित ते चढ़ंदे ॾिसी अचरज में पइजी वियो ऐं भित जे मथे हिसे ते पहुचण वारो थिए पियो त वरी हेठि किरी पियो पवे। केतिरा ई भेरा किरण जे बावजूद बि मुसलसल कोशिश कंदे नेठि भित पार करे वियो। किंग बिरोस तानेड़ीअ जे कामयाबीअ जी कोशिश ते खुश थी करे पंहिंजी आज़ादीअ जी कोशिश जा नेठि आज़ादी माणी। असांखे बि हर कमकार में मेहनत ऐं कोशिश करणु घुर्जे, छो त कोशिश कामयाबी जी कुंजी आहे।

अजीबसाइमाइन प्रोग्राम आहे रोशन सुबह रोशन नेटवर्क तां जंहिंमें सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो मेहरापुर ॿुधो पिया ऐं मां साईं मुंहिंजा इहा हक़ीक़त आहे त ज़िंदगी हिकु ड्रोड़ जो नालो आहे ऐं उहा अण खुट पहुच ऐं असां सभु इहो महसूस कंदा आहियूं त ॼण असां हिकु नंढड़े ॻोठ में रहूं पिया थियो आहे साइंस ऐं टेक्नोलॉजीअ वसीले इहे सभु ॻाल्हियूं ते पर दुनिया में जेतिरो बि रुतबो मान स्टेटस हिकु उस्ताद जे पेशे खे हासिलु आहे शायदि ई कंहिं ॿिए खे हासिलु हुजे छो जो उहे टेक्नोलॉजीज़ वग़ैरह सभु उन उस्ताद जे महिनत जो सबबु आहिनि जिन पंहिंजी महिनत वसीले पंहिंजे शागिर्दनि खे उन मंज़िले मक़ाम ताईं पहुचाइनि था ऐं शायदि वसीले शागिर्दनि खे पंहिंजो शागिर्दनि खे हिन दुनिया में साइंस जा नवां राज़ मालूम कराइनि था हुन में को आहे त दुनिया नवां सयारा पिण दरिया बि उस्ताद जी महिनत जे करे ई हीरनि जहिड़ा शागिर्द तराशे थो ऐं अॼु आहिनि जिन पंहिंजे उस्ताद जे तबे खणी आहे ऐं मान मरतबो बख़्शो ऐं सची दिलि सां पंहिंजो अदब कयो उहो ई

साईं मुंहिंजा जेकर के ॻाल्हाए ऐं उहा ई ज़बान आहे इंसान खे सियण जो चवण पाण खे शान सभ खां वधीक शकी आहे ऐं इत्मीनान वारी बि तमामु पंहिंजा नेक माण्हुनि जी असांखे हमेशह उहा ई हिदी आहे त रहबर बणायो। क़ुरान पाक में इरशाद रबी आहे त माण्हुनि सां मिठो ॻाल्हायो, मतिलब त असीं माण्हुनि ऐं सुठा लफ़्ज़ ॻाल्हाए परावन खे बि पंहिंजो करे सघूं। असां दुश्मनी बदिरां दोस्ती, नफ़रत बदिरां मोहबत ऐं भाईचारे जो बुनियादु विझूं त सारो माहौल मिठो ऐं सुठो बणिजी वेंदो।

ज़रूरत त हुनखे पंहिंजे हथनि अखरनि थियो पियो वञे थोरो हिकिड़ो दफ़ो न पर बार बार पियो लिखिजे त एतिरे क़दुरु जो उहो मवाद ज़हन न ईअं करण सां महफ़ूज़ थी वञे थो शागिर्द आहियूं त इम्तिहानी हाल में सवालनि जे जवाबनि असांखे कंहिं बि परेशानी ऐं मुंझार जो शिकार थियणो कोन पवंदो त यादगिरी जे लाइ असांखे लिखणु तमामु ज़रूरी आहे।

मुझा वापस जी गायो प्रोग्राम रोशन ऐ रोशन हयाती जी हयाती असल जें के असा या जीवन बे असल में सूरन जो सफर असा इहो सोचिंदा आयूं त थण गुरजे असा असा आसान पर ई न आहे ऐं नई बेन सा हमदर्दी कंत चवंदा आयूं गुरजे पर त हयाती जडे असी तसलीम न कंदासी त पोए पाण ते ई तरस या रहम कबूल करण जो जज़्बो हयाती गुज़ारण शायद जतो ई में निभाइण सहलो ऐं निभाइण वॾो गुज़ारण वॾो आहे।

शौरी हूंदी आहे, जंहिंमें उहो शौर त पोइ भले ऐं महसूस ई नाहे थींदो। असां तिन हूंदा आहियूं, यानी गुस्से जी शिदत सां हावी थी वेंदी आहे, बुरी हालत विञाए वेहंदा। शौरी में जहिड़े दोस्तनि अज़ीज़नि सां नाराज़ तब्दील थींदी आहे, सार महसूस कंदा आहियूं। तंहिं करे शौर खे सदाई लाइ ॾे न ॾिजे, त पोइ वॾे नुक़सान जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो।

0: जी हा सभिनि प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं हिन त वरी हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6 It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाए बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

پیشے میں ترقی گیا دیر

0: कर कल सुनी ए सचलिए तो मकसद मूल ललस प्रभु मुझा विचित मरीव
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: डाडू सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: तो आवाज भी है सुन 1.6।
1: बदरां उन खे पंहिंजे हक़ में बहितर समझे सियाणे कौल आहे त पहिरियों कदम आहे मायूसी हिकु दुबण त मथे निकिरण असुल ई नाहे ॾींदी हर माण्हूअ खे इरादो मज़बूत रखी ताक़त सां पंहिंजो पाण खे मज़बूत करे मायूसी मरी वेंदी हर माण्हू मुश्किल में बदरां माण्हू थी त पोइ कामयाबी संदसि मुक़दर बणजी वई मायूसी कंध भर किरंदी मायूसी कुबर आहे ऐं कोशिश कुंजी आहे।

ज़माने जे खम भरी केतिरा बि गहरा छो न हुजनि, त हर बर्दाश्त करण जी सगर ज़ुल्म जा तूफ़ान बि हिन खे लोॾे कोन था सघनि। वरी जे हिमत हक़ खां बि परे सियणनि सच चयो आहे त पंहिंजा न ॾेखारियो, जन वटि अव्हां जे ज़ख़्म जी मरम ई कोन्हे। ताल जे प्यार जा ककर आहिनि, तंहिं करे ॾुखनि सां बि प्यार कयो, छो जो ॾुखनि जे ज़ख़्मनि मंझां

मुजीब ऐं पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। कंधर जे मामले सां ॿिनि धुरनि में कोठी में जहिड़े दौरान फायरिंग, इमरान सब्ज़ोई ज़ख़्मी थियो। चक वेझो पोरहत मुबैना तशद बाद दिल बीहण सबब फौत ऐं सीधा कई। हिकु ॼणो गिरफ़्तार। टोपी चौक पाड़े जो रहवासी मंज़ूर अहमद शेख मुबैना तशद बाद दिल बीहण सबब फौत थियो। पुलिस इल्ज़ाम हेठि आयल मुंतज़िर शेख खे गिरफ़्तार करे वरितो। वधीक जांच जारी।

0: अफ्रीकी मुल्क नाइजर जे एयरपोर्ट ते हथियारबंदनि जो 5 महीननि दौरान ॿियो हमिलो, 35 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GAFM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जी एफ एम 91।
1: It's 11:30 AM. This time check.
2: जिजन सा तैयार निखार साफ रोशन ग्लो ब्लीच क्रीम
3: अब आपकी फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।
4: ये गाना ऐसी हो और मुझे कहते लॉग मेकअप वाली गाड़ा आई फूटी इंग्लिश ना देती मेरे करूँ तुझे ब्लॉक न करूँ तुझे मेरा हेटर
3: वाइट एज फाइव डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और भरपूर खूबियाँ में फुली एब्जॉर्ब हो जाए स्किन को फेयर आए आपको देहरा वाइट एज ब्यूटी सोप चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ग्लोइंग स्किन प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ प्यारी एफ एम 94 सिंध जो आवाज़।

0: अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।
5: स्टॉक में अमेरिका ईरान विच में थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो।

सुभाणे हिते वॾी घटाईअ जो इम्कान। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमत में 55 रुपियनि ताईं घटाई करण ते गौर करण लॻी। ज़रियनि जो चवण आहे त नाणे वारी वज़ारत लेवीज़ वधाइण ऐं पेट्रोल 20 रुपया ऐं डीज़ल 36 रुपया फी लीटर सस्तो करण जी ख़्वाहिशमंद आहे। हतमी फ़ैसिलो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ कंदो।

सिंध जे पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरना। नंदो में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जी टे ॾींहं बि अलामती भुख हड़ताल। आबादगारनि, हारियुनि, पोहरतनि, शागिर्दनि ऐं शहरनि जी भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगारनि मूजिबि बदीन ज़िले में पाणीअ जे बहरान सबबि ढोर बि उञ विघे मरी रहिया आहिनि।

कंबर वेझो जमीन मां मिटी खणण था बिंदुरनि में झेड़ो नौजवान कतल बजना जख्मी घोट अलीबख्श पवर में ज़रई ज़मीन मां मिटी खणण था पवर बिरादरी जी बिंदुरनि में झेड़ो थियो फायरिंग जे नतीजे में बिलावल पवर मारिजी वियो मुजीब ऐं आज़म पवर जख़्मी थियो पुलिस मुजिब ॿई धुरियूं पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि कंधकोट में बि ज़मीन जे मामले तां बिंदुरनि में झेड़ो हिकु ॼणो ज़ख़्मी घोट बादल खान सब्ज़ोई में झेड़े दौरान फायरिंग इमरान सब्ज़ोई ज़ख़्मी थियो

0: Aha!
1: कैरपुर में मलाह बिरादरी के चंगे मुड़स जहा कातिल गिरफ्तार न थे खिलाफ एसएसपी ऑफिस आरो धरनो मुजाहरीन जो गुलाम नबी मलाह जहा कातिल गिरफ्तार करने जो मुतालबो मुजाहरीन मूजिब जवाबदार हमलो करे असाने चंगे मुड़स गुलाम नबी मलाह के कतल कयो आहे पुलिस कुछ बुधण जे लाए तैयार ना आहे जवाबदार गिरफ्तार कया वञन अफ्रीकी मुल्क नाइजर के एयरपोर्ट से हथियारबंदन जो पंज महीनों दौरान बो हमलो 35 जणा मारी वया केतरा ही जख्मी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hame Diamond Glow Bleach Cream।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार।

0: सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलना रहो।

पण पर शकले नाशोर संसारे

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर।
5: नेतन्याहु चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ हिते लहटंदी, गज़ा जीअं लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
6: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
7: सिर्फ मामा और नीडो जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है, राइट न्यूट्रिशन।
6: Might not be attacking the awful ally that I have anywhere left in the entire world.
5: अमेरिकी नायब सदर जे डी वेम्स इसराइली वज़ीरनि ते सख़्त तनक़ीद, इसराइल ते अमेरिकी अहसाननि जो बि ज़िक्र करे छॾियो। जे डी वेम्स चयो आहिनि इसराइली वज़ीर दुनिया में पंहिंजी अकेले ऐं ताक़त इतिहादी खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। सदर ट्रम्प ते तनक़ीद कंदड़ इसराइली वज़ीरनि खे होश खां कम वठणु घुर्जे। सदर ट्रम्प ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि। जे डी वेम्स खां पहिरीं सदर ट्रम्प बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

कम मां मिटी खणण सां ॿिनि धुरियुनि ज़ख़्मी ज़मीन मां मिटी ऐं आदम पवन ज़ख़्मी थियो। पुलिस मूजिबि ॿई धुरियूं पाण में वेझा आज़ीद आहिनि। कंदकोट में बि ज़मीन जे मामले सां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, हिकु ॼणो ज़ख़्मी। ॻोठ बादल खान सब्ज़ोई में झेड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में इमरान सब्ज़ोई ज़ख़्मी थियो।

मटियारी भरसा शाहपुर दर्प थाने जद में कम दौरान भित किरण सबब पोहरत दबिजी फौत गोठ सिंगार में कम दौरान भित किरण सबब रसूल बख्श खोसो दबिजी फौत थो। खैरपुर में मलहा बिरादरी के चंगे मुड़स जहा कातिल गिरफ्तार थे खिलाफ एसएसपी ऑफिस आदो धरणो गुलाम नबी मलहा जहा कातिल गिरफ्तार करने मुतालबो मुजाहरीन मूजिब जवाबदारन हमलो करे असाने चंगे मुड़स गुलाम नबी मलहा के कतल कयो पुलिस कुछ बुझण लाइ तैयार ना जवाबदार गिरफ्तार कया वन। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के एयरपोर्ट के हथियारबंदन जो पंज महीन दौरान बो हमलो पंजटी जना मारजी वैसमी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6। दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज और सिंध की आवाज
1: PM
2: दिस टाइम चेंज हो रहा बाय इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: गीत संगीत जो आवाज सिंध जो आवाज

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम कुदरती जिजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो
2: अब आपकी खूबसूरत स्माइल

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GFM 91.6।
2: कोक स्टूडियो सीजन 9।
0: या नबी जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: कोक स्टूडियो सीजन 9।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती है जो असल राज. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 PM. This time check is blocked.
3: जिन्हें माँ पांचो ख्याल।
4: अब आप FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: स्टेशन अमेरिका की नायब सदर JD वेंस जो भी स्विट्जरलैंड जो बजट स्टाफ में अभी चमी अजु थियल गाल न थी दियूं गालन जे लाए तैयारन जो तैयार है सो इस गालन जी नई तारीख बाबत आगाह न कयो। जंगबंदी मुआदे बावजूद हमला न रुकिया इसराइली हमलन में 16 शहरी शहीद केतरा ही जख्मी लबनानी इख्तियार मूजिब इसराइली फौज नफ्तिया से बमबारी कई है जिन नतीजे में केतरा ही घर भी तबाह थी वह इसराइली हमलन के नतीजे में 16 शहरी भी शहीद थे इसराइली वजीर रिवायत इसराइली फौज लबनान के बफर जोन का पोते न हटंदी गजा जिया लबनान में भी खतरा खत्म कया वा।
6: People who have come out and in some ways very personal incident of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state.

0: of the world's superpower. If I would...
1: जेडी वेन ते सख्त तनानन जो भी जिक्र कर छो थार इसराइल के बचा रहा है इसराइली वजीर दुनिया में पंजे अके हाजे के निशानो बनाए रहा है सदर कदर इसराइली वजीर अठन घुर्जे सदर बे इसराइल ते नाराजगी जाहिर कर चुको है।

वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि पासपोर्ट ऐं इमिग्रेशन बाबति इजलास। हुकूमत जो पासपोर्ट खे मुकमल तौर ते ई पासपोर्ट तरफ़ मुंतक़िल करण जो फ़ैसिलो। मोहसिन नक़वी चयो त ई पासपोर्ट ते मुंतक़िली सां पासपोर्ट में थींदड़ फ्रॉड रोके सघिबो। सिंध हाई कोर्ट गदले पाणी जी फरहमी ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते घोटकी जे डीसी खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। 7 जुलाई ते रिपोर्ट बि पेश करण जो हुकुम। अदालत चयो त आइन जे आर्टिकल 9 तहत साफ़ ऐं महफ़ूज़ पाणी हर शहरीअ जो बुनियादी हक़ आहे। मामिलो इंसानी वक़ार, सिहत ऐं ज़िंदगीअ सां सिधो सओं लाॻापियल आहे। धुरन खे नोटिस जारी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। निंदो में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जी 3 ॾींहं बि अलामती भुख हड़ताल। आबादगारनि, हारियुनि, परहतनि, शागिर्दनि ऐं शहरनि जी भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगारनि मूजिबि बदीन ज़िले में पाणीअ जे बुहरान सबबि ढोर बि उञ विघे मरी रहिया आहिनि।

0: कंबर वेझो जमीन मां मिट्टी खणण था बिंदुरिन में झेड़ो नौजवान कतुल बजना जख्मी गोठ अलीबख्श पवर में जरई जमीन मां मिट्टी खणण था पवर बिरादरी की बिंदुरिन में झेड़ो थो फायरिंग के नतीजे में बिलावल पवर मार वो मुजीब ए आजम पवर जख्मी थो मुबारकपुर वेझो आबघात जानायल नारी के कार इल्जाम हेठ कतुल थियण जो इंकशाफ बजना गिरफ्तार पुलिस चाहे तो नारी साइमा के मामे रसूल बख्सर की टिन जन से गडजी कतुल किया है। मटारी भरसा शाहपुर धरपुर थाने के हद में कम दौरान भित किरण सबब पोरत दबजी फौत कोट सिंगार में कम दौरान दबजी फौत थी वो कराची में मनशा दिलर पिंकी जा गिरफ्त अदालत जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर जांच अफसर का अग भराई रिपोर्ट
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जी एफ एम 91.6
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: की खूबसूरती का फिक्री।
1: उनके लिए जो करते हैं खिलौर, मेरी मॉडल गाल गाल प्रिंसेस, इंग्लिश में कर बातें तेरी दिल ब्लॉक, न करूं तो तू ना मेरा हेटर।
0: वाइट एज ब्यूटी के ब्यूटी प्लांट एलोवेरा वाइट पोर्टफोलिया, जिसके मिनरल फॉली एब्जॉर्बेंट को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोफा ताजगी के स्क्रीन प्रोडक्ट बायोकॉन इंटरनेशनल।
2: हक सच जो ये हैदराबाद एफएम 90 सिंध जो आप
3: जिस धरती से जुड़ा कर नाज
4: उसी खिती है आवाज

ਛੇ ਬਣਦੇ ਅਜੇ ਅਲੀ ਖਾ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜਾਣੇ ਜੰਨਤ ਲਾਏ ਮਰਦੇ।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो जीए हैदराबाद 91
1: जिस धरती से आज जीए एफएम नेट
0: सच जो आवाज सिंध जो आवाज
1: धरती से जुड़ा कर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी
1: एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरानो सुबह सिर्फ जी एफ एम 88 नेटवर्क ते

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: सिंध हाई कोर्ट तलब करे वरितो। 7 जुलाई ते रिपोर्ट बि पेश करण जो हुकुम। अदालत चयो त आईन जे आर्टिकल 9 तहत साफ़ ऐं महफ़ूज़ पाणी हर शहरी जो बुनियादी हक़ आहे। मामलो इंसानी वक़ार, सिहत ऐं ज़िंदगीअ सां सिधो सओं लाॻापियल आहे। धुरिन खे नोटिस जारी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरना। निंदो में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जी 3 ॾींहं बि अलामती भुख हड़ताल। आबादगारनि, हारियुनि, पोहतनि, शागिर्दनि ऐं शहरनि जी भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगारनि मूजिबि बदीन ज़िले में पाणी जे बहरान सबबि ढोर बि उन विघे मरी रहिया आहिनि। नौजवान क़तल, 2 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ अलीबख़्श पवर में, जंहिंमें बिलावल पवर मां आज़म पवर ज़ख़्मी। मुबारक शाह, 2 ॼणा गिरफ़्तार। पुलिस सेवा त लारी साइमा खे मामे रसूल बख्श सरकी 3 ॼणनि सां गॾिजी क़तल कयो आहे। मटियारी भरिसां शाह जद में कम दौरान भित किरण सबब पोहत दॿिजी फौत। ॻोठ खोसो दॿिजी फौत थी वियो। कराचीअ में मंशिया दीन पिनकीअ जा गिरफ़्तार कयल 2 साथी अदालत में पेश। अदालत जवाबदार आकिब ऐं गुलाम अब्बास खे 2 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। अदालत ईंदड़ ॿुधणीअ ते जाच आफिसर खां अघ भराई रिपोर्ट बि तलब करे वरिती।
1: मटियारी के हो तो आवाज।
2: इट्स 1 PM।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खिते की बनी है आवाज।
4: GAFM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम 91.6।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दौरे की दावत दिनी कौमी मदद ला सभी कहूँ एक रहंदी जंगबंदी से खिते में मुआशी खुशहाली इंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्म में शिरकत की दावत दिनी है। आखिरी रस्मू 3-4 जुलाई तक थी। पाकिस्तानी वफद भी शरीक थी। कौमी असेंबली ईरान अमेरिका माहदे से कौमी क्यादत के भेटा पेश करने वालों ठहराव मंजूर कर वरतो। वजीर आजम नायब वजीर आजम फील्ड मार्शल ए वफाकी घरू वजीर समेत बी क्यादत के भेटा पेश कई वही। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाशनामे ते सहन बाद अमेरिका ए ईरान विच मेजूरी थियल गालियों मुलतवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छदी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो भी स्विट्जरलैंड जो दौरो मुलतवी कयो वियो। स्विस इख़्तियारनि मूजिब बजन स्टाफ में अमेरिका ए ईरान विच मेजूरी थियल गालियों न थींदियूं। गालियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्जरलैंड गालियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयार आहे। स्विस इख़्तियारनि गालियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो। वॾी माहदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनानी इख़्तियारनि मूजिब इसराइली फ़ौज नफ्तिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। हिज़्बुल्लाह जे जवाबी हमलनि में 14 इसराइली फ़ौजी मारिजी विया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जी लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
2: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked

की 15 को जहूर उसका हुआ है, जो आज तलक पर्दाए गैबत में छुपा है। नाम उसका नहीं जानते बस इतना पता है, इस दौर के फितनों के लिए कहरे खुदा है।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जी वॾी कामयाबी आहिनि क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त इस्लामाबाद वाइदे खे हतमी शिकिल ॾियारण में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो अहम किरदार आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो किरदार बे साराह जोॻो रहियो। ईरान अमेरिका वाइदे सां दुनिया में पाकिस्तान जो वक़ार वधियो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तानी क़ौम जा थोरा मञा, मूं खेसि पाकिस्तान जे दौरे जी दावत ॾिनी। क़ौमी वहदत लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदी सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनेई जी आख़िरी रस्मुनि में शिरकत जी दावत ॾिनी आहे। आख़िरी रस्मूं 3-4 जुलाई ताईं थींदियूं। पाकिस्तानी वफ़द बि शरीक थींदो। क़ौमी असेंबली ईरान अमेरिका वाइदे ते क़ौमी क़यादत खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर समेत ॿी क़यादत खे भेटा पेश कई वई। इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती यादाशनामे ते सहनबाद अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं मुलतवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छॾी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुलतवी कयो वियो। स्विस इख़्तियारनि मूजिब बर्जन स्टॉक में अमेरिका ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो। जंगबंदी मुआहिदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनानी इख़्तियारनि मूजिब इसराइली फ़ौज नफ़्तिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। हिज़्बुल्लाह जे जवाबी हमलनि में 14 इसराइली फ़ौजी मारिजी विया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जी लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
2: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
1: American Naib Sadr J.D. Vance Israeli wazirin te sakht tanqeed. Israel te American ehsanan jo bhi zikr kar chhadyo. J.D. Vance te American hathiyar Israel ke bachaye raha hain. Israeli wazir duniya mein pande akele aur taaqatwar ittehadi ke nishano banaye raha hain. Sadr Trump te tanqeed kardar Israeli wazirin ke hosh ka kam uthan ghurje. सदर ट्रंप ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि। जे डी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालेबाफ खबरदार करण चयो आहे त सुप्रीम लीडर जे हुकुम ते अमल करण जा पाबंद आहियूं। तय थियल माहिरे जे समूरनि शिकुनि ते अमल थियणु घुर्जे। जेकॾहिं ॿी धुर ॿीहर जंग तरफ़ वधी त जवाब पहिरीं खां वधीक सख़्त हूंदो। ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि में का बि रंड कंदा आहे। ईरान ऐं अमेरिका विच में ॻाल्हियूं महरमल हराम सबब देर जो शिकार थियूं आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त जुलाई जे पहिरें हफ़्ते में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई जी तदफ़ीन थींदी। 60 ॾींहनि में मरहलेवार ॻाल्हियुनि वारो अमल मुकमल थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां अॼु राति तेल जी क़ीमतुनि में वॾी घटिताई करण जो ऐलान। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त जंगबंदीअ सां आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थियो आहे। हुकूमत पेट्रोल सस्तो थियण ते रिलीफ ॾियण जो वाइदो कयो हो। आवाम खे पेट्रोल जे मद में अॼु राति वॾो रिलीफ ॾिनो वेंदो।

सिंध असेंबली में अपोजिशन जी बजट ते सख्त तनक़ीद, करप्शन रोकण ऐं अवाम जे फलाह वारनि मनसूबनि ते कम करण जो मुतालबो। एमकेएम जे आमिर सिद्दीकी चयो त सिंध हुकूमत अॼु ताईं पेश कयल कंहिं बि बजट ते अमल नाहे कयो। सखर हैदराबाद जी अस्पतालुनि जी हालत ख़राब आहे। नंढनि आबादगारनि जे लाइ बजट में कुझु बि नाहे। शारिक जमाल चयो त सिंध खे 18 सालनि दौरान वफ़ाक खां 71,000 अरब मिलिया आहिनि, पर अवाम ते ख़र्च नाहिनि थिया। कराची खां कश्मीर ताईं रुगो मसला ई मसला आहिनि, केरु हल करण वारो नाहे। हुकूमती एमपीए बजट जी साराह कंदे चयो त सिंध हुकूमत बहितरीन बजट पेश कई आहे, अवाम जी तरक़ी जे लाइ पीपल्स पार्टी कम कंदी रहंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि पासपोर्ट ऐं इमिग्रेशन बाबति इजलास। हुकूमत जो पासपोर्ट खे मुकमल तौर ते ई पासपोर्ट तरफ़ मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो। मोहसिन नक़वी चयो त ई पासपोर्ट ते मुंतकिली सां पासपोर्ट में थींदड़ फ्रॉड रोके सघिबो। अफ़गान तालिबान जी पाकिस्तान में ड्रोन हमलनि वारी दावा कूड़ी निकिती। पाकिस्तान हिकु ड्रोन किराइण जी तस्दीक करे छॾी। सुसमा वारी वज़ारत अफ़गान तालिबान जे ड्रोन हमलनि जी दावा खे रद्द कंदे चयो आहे त अफ़गान तालिबान केपी ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़नि में दाइश जे मुबैना थाकनि खे ड्रोन सां निशानो बणाइण जी दावा कई हुई। दाइश समेत केतिरियूं ई दहशतगर्द तंज़ीमूं अफ़गान तालिबान जे कंट्रोल हेठि आयल इलाइक़नि में मौजूद आहिनि। अफ़गान तालिबान पाड़ेसरी मुल्कनि में दहशतगर्दनि जी पुठिभराई खे लिकाइण जे लाइ कूड़ा बयान जारी करे रहिया आहिनि। तालिबान जो हिकु ड्रोन पाकिस्तान जी हदुनि में खैबर भरिसां दाख़िल थियो, जंहिंखे एयरफोर्स तबाह करे छॾियो।

0: सिंध हाई कोर्ट गदले पानी की फरहमी खिलाफ दरख्वास्त घुटकी के डीसी की जाती हैसियत में तलब कर वरत। 7 जुलाई से रिपोर्ट भी पेश करने जो हुक्म। अदालत आइन के आर्टिकल 9 तहत साफ ए महफूज पानी हर शहरी जो बुनियादी हक है। मामलो इंसानी वकार सेहत ए जिंदगी से सीधो सौ लागापल है। जुर्म की नोटिस जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहर में पानी की खोट खिलाफ आबादगार जहां मुजाहरा धरना। निंदो में पानी की खोट खिलाफ आबादगार की 3 दिन भी अलामती भुख हड़ताल। आबादगार हारन पोहतन शागिर्द ने शहर की भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगार मुजिब बदीन जिले में पानी के बहरान सबब ढोर भी उज वे मरी रहा। कंबर वेझो जमीन में मिट्टी खड़न ता बिंदुरन में झेड़ो। नौजवान कतुल बजना जख्मी। गोट अलीबख्श पवर में जरई जमीन में मिट्टी खड़न ता पवर बिरादरी की बिंदुरन में झेड़ो थो। फायरिंग के नतीजे में बिलावल पवर मारजी वो। मुजीब ए आदम पवर जख्मी थे। मुबारकपुर वेझो आबदा जारे लारी के कारण इल्जाम हेठ कतुल थे इंकशाफ। 2 जणा गिरफ्तार। पुलिस चवाए तो लारी साइमा के मामे रसूल बख्श सरकी 3 जणन से गडजी कतुल कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: हजारों में 72 तन थे तस्लीम रजा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

مجھ کو چھوٹا نہ سمجھ، مجھ کو چھوٹا نہ

छह महीने कहूं पर जोश अली रखता हूं, एक पल में

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है जीए एर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: आहिल जामिन असांजो नज फजो वाली हा नज फजे वाली जो नारो जे दिल सा तू हणदे को मोहम्मद के बणदे अलचे अली का फिरंदे त मौला जान जन्नत लाए सिक्की सिक्की मरंदे सिक्की सिक्की मरंदे सिक्की सिक्की मरंदे
1: अलम घर ते हिल
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 आवाज उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: 남겼나 역사와 앞과 하던 분이고 다시 구사니까 술이 뜨거우니고 아리오 끝났다 마다 기억하 그럼 역전이 아이기 이때의 빠이 꼼꼼 와서 다행게
1: पेट्रोल 74 वडो रिलीफ वजीर आजम पेट्रोल 74 एंड डीजल 67 रुपया फी लीटर सस्तो करे छो नवा अघ रात 12 वगे का लागू थी वा शाहबाज शरीफ है लात का पेट्रोल 373 रुपये में घटजी फी लीटर 299 रुपया एंड डीजल 378 रुपये में घटजी 311 रुपया फी लीटर थी वो जो वायदो कौम से किया हो अलहमदुल्ला वो पूरो कर रहा आय तेल की अघन में घटताई जो फायद बिना देर आवाम के मुंतकिल कर रहा आय मुश्किल वक्त में अवाम जो सब्र कर उन मिसाल न मिले।

ईरान ऐं अमरीका विच में मफ़ामती याददाश्त नामनि ते सयूं पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहिनि। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म जो चवण हो त इस्लामाबाद मुआहिदे खे हतमी शिकिल ॾियाराइण में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम किरदार अदा कयो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो किरदार बि साराह जोॻो रहियो आहे। ईरान अमरीका मुआहिदे सां दुनिया में पाकिस्तान थियो। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तान ऐं क़ौम जा थोरा मञिया। मूं खेसि पाकिस्तान जे दौरे जी दावत बि ॾिनी। क़ौमी वहदत लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदीअ सां ख़िते में मुआशी खु़शहाली ईंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्ला ख़ामनाई जी आख़िरी रस्मनि में शिरकत जी दावत ॾिनी आहे। आख़िरी रस्मूं 3-4 जुलाई ताईं थींदियूं। पाकिस्तानी वफ़द बि शरीक थींदो। क़ौमी असेंबली ईरान अमरीका मुआहिदे ते क़ौमी क़यादत खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ बि मंज़ूर करे वरितो। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर समेत ॿी क़यादत खे बि भेटा पेश कई वई।

0: ट्रक पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अल्लाह

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़। बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत जो आवाज, खुदा ना रहो।